0: जाऊँ एक्सप्लोर करने के साथ में मैंने जब मम्मी जो है अभी इस बारे में सब कुछ समझाई जाने वाले से ना
1: Gracias.

थे युवा छात्रों का जीवा छात्र हमने आज अति जीत का जैसे सदमा का सब मुझे खुशी नहीं हो।

कोशी नगरपालिका एक चेतन समय 2083 साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे आयोजक भास्करी नगर कार्यपालिका को कार्यालय भास्करी

हो। लागु पदार्थ को एक पटक को प्रयोग गलत मानसिक समस्या पढ़ाई में असर पुर्व साथी को दबाव में होने आपको सपना को पक्ष में निर्णय करूं तनाव भे खुला कुरा करो समाधान लागू पदार्थ होना लागू पदार्थ बा टाड़ा बसऊ स्वस्थ रोजालो भविष्य।

0: संभव निगुण आवश्यक छे जाकर संरक्षण में हमरा सब जे ड्यूटी
1: पश्चिम अनुग्रह संपत्ति आजादी का कारण से छेन भावनी पूरी बना सकता व्यवस्था बना आजादी नियंत्रण करना हमारा सब उनका दायित्व कर्तव्य हो हमारा सब कुछ आत्म बनवा क्षेत्र में अग्नि रेखा बने रहा सुखा समय आया से आगा पाकर मरमत संभावना का सफाई करी
0: बीरी चुनौत माथुर पिका आदि बुटाई बनमन निभाकी
1: बनमन भीतर बार बने ना काम नहीं करी
0: बनमन पिकनिक खाए गए नशे उच्छे तमा रहर आदि मनाशे बुटाके के लिए छोड़ी
1: सुखा मौसम बनमन आगे लगना पस्तु सदाई लाइटर लेकर नहीं लेगी
0: बनमन आगे लग देखा से लगभग बन पाया सामुदायिक बन को प्रहरी हलवा खबर करी सब कुछ सुरक्षित तरीका से आदि बुटाई
2: डिविजन बन कार्यालय बढ़ दिया फोन नंबर 02

नभई सन्तुलित खाना खाए व्यायाम शब्द गरी धूमपान मदिरामा चाहिँ टुन रही तर मलाई नियन्त्रण गरी आज निर्णय क्या जीवन अत्र निशा रोगमा चाहिँ बाँची स्वस्थ जीवन अपनाई।

मैंने आपके पांचवें रुपये से रेस्ट में गया हूँ। आपकी संतान के घर बड़ा मजा रहा।

0: आपल्याची नियंत्रण करणार टेन्शन चाललंय तर त्याची
1: वनस्पति में वन्य जंतु संरक्षण ने कहा मानव जाति जी पर संभव नमूना मिला वर्षे या कर संरक्षण में हम प्रस्ताव को जो जीती
0: असल संपत्ति आजादी का कारण से छह भर में पूरी तरह से चला वही उससे दोनों आजादी नियंत्रण करना हमारे सपनों का दायित्व को पत्ते हो
1: बंद हो कर बचे न
0: हम सब कुछ अपने दोनों क्षेत्रों में हम रेखा बनेगा सुखा चुने महीना से आकर
1: आदि बुटाई थाकी
0: पिकनिक
1: खाए गए क्षेत्र में आदि मजा से बुटाई के छोड़ी
0: सुखा मौसम में बनों में आदि लगना वस्तु सवारी लाइटाने का भी मिली
1: बनों में आदि देखे से लगभग बन कार्यालय सामुदायिक दल को पहरी खबर करी सब कुछ सुरक्षित तरीका से आदि बुटाई

ασχολείται με τα ίδια πράγματα, τα πολλά φάρμα, με τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, τα πολλά φάρμα, मालिका परिचय का कार्यालय से सामूहिक प्रकरण सख्यों वार्षिक प्रतिवेदन 2083 अनुसार प्रतिशत का अनुभव स्थानीय धर्म और बेरोजगारी के बाद अंतिम वर्ष 2082 का लेखा परिचय प्रतिवेदन अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगार मधुबनगर पालिका में 2.09% लगा उसी तक नगर पालिका का बेरोजगारी 1.02% लगा से केवल गांव पालिका में 0.77% बेरोजगारी प्रतिवेदन अनुसार दारू पर नगर पालिका का बेरोजगारी 0.53% प्रयातन गांव

सब कुछ एक हम बेजुर ठाकुर बाबा नगर पालिका में चुनाव 10.15% प्रतिवेदन वचन आगे महालेखा परीक्षक को प्रतिवेदन स्थानीय तह में आर्थिक अनुशासन खर्च व्यवस्थापन तथा लेखा प्रणाली में थप प्रभावकारी बनाए पार्न आवश्यक संकेत कर बर्दिया को गोरिया नगर पालिक में सेवा प्रवाह में थप प्रभावकारी पारदर्शी व जनमैत्री बनाने उद्देश्य सहजीकरण सम्मेलन तथा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम मंचल जिला प्रशासन कार्य बर्दिया का आयोजना में हुए कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी कुमन बहादुर हमाल की अध्यक्षता में नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादव प्रमुख अतिथि कार्यक्रम में नगर प्रमुख सहित गौतम तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कृष्ण प्रसाद जैसी का विशेष उपस्थिति रहने कार्यक्रम में स्थानीय समस्या प्रदान विधिवत सेवा संगुनाश व्यवस्थापन सेवा वितरण का क्रम में एक तरह समस्या तथा समाधान को उपाय बारे छलफल अंतरक्रिया कैकी सहभागी सरकार वाला सेवा प्रवाह अतुष्ट सहयोग उत्तरदायी बनाने आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने कार्यक्रम में संबोधन करती प्रमुख जिला अधिकारी गोविंद बहादुर हमाल नागरिक हुकम समय में पुनस्तरीय सेवा उपलब्ध कराइन सबको सरकारी निकाय का सांसद दायित्व अलग प्रक्रिया वहां सेवा प्रवाह में समन्वय जवाबदेही प्रभावकारी नागरिक आवश्यक अलग उल्लेख करके आधुनिक सुनवाई

0: सभी नगर पालिका को सार्वजनिक सुनवाई होने संबंधी सूचना।
1: नगर पालिका को दोस्तों चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई एवं भी गिरता 83 साल 10 बजे हुई भूमिका है। संपूर्ण पांचकड़ी नगर पार्षद पांचोभा तिथि बहिनी संपूर्ण राजनीतिक दल का प्रतिनिधि समाज सेवी जी बन गए आमंत्रण में बसों
0: स्थान पांचकड़ी नगर पालिका एक चेपान समय 2083 साल 10 बजे बिहार 11 बजे भाषकरी नगर कार्यपालिका को कार्यालय भाषकरी

खेत हमारे लिए खास था। अब हमें महिला फसल का उचित पालन करने गए, इसी बात मेरे घर में लगा था दूध उत्पादन में कमी आवी उच्च जो की दूसरी तो हर साल संसद उच्चता

0: चलो खाना चलो फिर तुम खत्म ना हो गया।
1: 15 नंबर में कुछ रुपए मिनट की कैनेडा मौसम को हवा पानी ने अपने खेती बाड़ी में समस्या पैदा करने से हर जगह नाम ना चले समय को पाए तो अच्छा हो जाए। याद कर दी ना हरे सुबह

0: 35 आर्थिक साधन सभा के सूचना
1: प्रतिबंध सरकारी संस्थान नियोग का 35 आर्थिक साधन सभा तथा उस सभा के प्रधान संस्था का प्रमुख कार्य समिति का निर्वाचन समय

0: विचार स्वच्छ न बटे से विचार
1: समय विशेष कार्यक्रम की संध्या पर परिश्रम किसान कौन करे मंडली की राशि
0: नवदीप सहकारी संस्था लिमिटेड के राशि संपर्क नंबर 0 1 9

0: तीन सौ रूपए तो खाने चिंता कर सो। पाँच मिनट गुरु से पागत के साथ आम बाजरे बगैर किसान के लगे सिद्धांत के
1: ठीक बात दीदी।

अभिषेक था। मैं सिर्फ बनी आगे आगे अभिषेक में क्रियाकलाप नहीं करी, वो अपराध में शरीफों को सजाई भागीदार में बने। डिवीजन बल कार्यालय बढ़ दिया। फोन नंबर 084-3020-156।

0: प्रतिनिधि समाजसेवीज्यूहरूलाई हाम्रो दल गर्दछौ।
1: स्थान बाँसकोटी नगरपालिका एक चेपाङ। समय 2083 साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे। आयोजक बाँसकोटी नगर कार्यपालिकाको

स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वस्थ संतान को घर को स्थावर स्थान पर नाथ खाना का संग्रह नियमित रूप में आयरन कैल्शियम आयरन सुरक्षित परिवार।

0: स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संयुक्त सत्यवंश अनुसंधान केन्द्र संगठन सहकारी रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब काठमांडू मित्रों का साथ साथी विश्वभर का रोटरी केन्द्र एवं पार्टनर क्लबों द्वारा जनहित के लिए प्रस्तुत संदेश
1: तपाईँको परिवार र उपभोक्ता समेतलाई गम्भीर असर पुर्याउँछ।

0: गतिविधि गर्न गैर कानूनी हो वित्तीय अनुशासन विरुद्धको निन्दनीय कार्य हो।
1: लिमिट नेपाल नवोदित वित्तीय संस्था लिमिटेड हो। रेडियो पूर्ववा एफएमको सहकारीमा जनहितमा जारी सन्देश।